नारद मुनि ने चरणा पे ठहके किसे प्यार वाले मन ने अरदास की थी। नारद जी तुस तानू जो मेरे भगवान दे दर्शना नु जा रहे हो, नारद तुसी तानू जिन्हां नू मेरे भगवान दे दर्शन मिलनगे, नारद ने तकिया प्यार वाला मन, ए प्यार वाला कोई तपस्वी अखां विचों अथरू के रहे। नारद ने कहा क्यों रोंदा है, तैनू भी किसी चीज की लालसा है, जंगल बियाबान दे विच समाधि लगा के बैठे हैं, तू की चाहुंदा है। इस दियां कुब्बां निकलियां ते प्यार नाल इसने पढ़िया, नारद मेरी तो एको मंग है केड़ी।

आप अविची जी आस्था वाला जीवन बड़ा स्वादला हुंदा है आखो श्री भाई आस्था वाले जीवन विच आस है ना इंतजार है ना इहदे विच बड़ा सुख है इहदे विच कोई अगम्मी रस है साईं दी याद विच मालिक दी याद विच यादां भी पूरियां हो जांदियां पर प्यारी सत्संग याद विच भी रहना इह भी अवस्था है मालिक दे दर्शनां दी प्यास विच इस जीवन नूं बतीत करना हजूर फरमाउंदे ने मैं उस तों भी कुर्बान जांदा हां जिस जन को प्रभ दर्स प्यासा नानक तके बल पल जाए इस प्यास च जीवन बतीत होंदा रहे फिर आपे मालिक मेहर करे प्यारी सत्संगत जे इहदियां आसां पूर्ण तां साडियां भी पूर्ण आखो श्री अकाल।

दुनिया का तारक दाता। आज जंगल बियाबान समाधि लगा के बैठा है। कौन? मिठ बोला गुरु। कदे भी कौड़ा नहीं बोलता। हर समय मिठाई बोलता।

दुनिया का उद्धार करता है। एडा दयालु गुरु है, जे गलत फहमी विच आके कोई इस नूं वट्टे मारदा है, ए गुरु ओदे नाल भी प्यार करदा है। कौन ही उजिया मिठा गुरु, प्यार नाल सारे आखो धन गुरु नानक। आओ इस परोपकारी गुरु दा नाम एक बारी सारे जपो, कोई रसना भी खाली ना रह जाए। सारिया नूं दातां देण वाला, हिंदू मुसलमान सारी सृष्टि दे बंदयां नाल प्यार करन वाला मेरा गुरु नानक। आओ तुसी अदब सत्कार विच आओ, जिस तरह जुड़े हो गुरु नानक दे प्यार विच, नेत्रां द्वारा दर्शन मन जुड़िया है, आओ रसना भी पवित्र करो। प्यार नाल सारे आखो धन गुरु नानक। अजे भी सारे ने नहीं किया। गुरु नानक दा नाम लाभदायक है। ख्याल आएगा भी कितना लाभ है गुरु नानक दा नाम जपण दे नाल, क्योंकि आपा सारे विहारी हैं ना, कोई काम करिए उहदा लाभ पहला सोच ले, चाहे दफ्तर जाण वाला है, चाहे दुकान ते बहण वाला है, कोई भी किता करन वाला है, अपनी ड्यूटी देंदे हां सोचदा भी इतनी क मैनू आमदनी हो रही है, जां इतनी क मैनू तनखा मिल रही है। ओ कईआं नूं ख्याल आएगा कि भई गुरु नानक दा नाम जपिया मिलदा की, आ जांदे ना मन च होया, मन की कारदा करदा रहिंदा, कदे गुरमुख बन जांदा, कदे मनमुख बन जांदा, कदे दानी बन जांदा, कदे मंगता बन जांदा, कदे पुन्नी बन जांदा, कदे पापी बन जांदा, कदे नीवा हो जांदा, कदे उच्चा चढ़ जांदा है टीसी दे उत्ते, कदे बुरा हो जांदा है, कदे भला, ए मन दा सुभाव है। तो फुरना बन जांदा है ना। तो आओ पहला पुछिए किसे महापुरुष नूं, जी तुसी रब दे प्यारे हो, गुरु नानक दे प्यारे हो, दसो जे गुरु नानक जपांगे तां की मिलेगा। ओ लिखिया है महापुरशां ने, नाम लिए सतगुरु नानक के, नाम लिए सतगुरु नानक के, दुख दर्द रोग मिटे सो भयानक। नाम लिए सतगुरु नानक के, सुख संपत भोग मिले सो अचानक। नाम लिए सतगुरु नानक के, जग काग चुगे मिल मोती मानक। सारी संगत मिलके आखो धन धन गुरु बाबा। ए तां किसे गुरु दे प्यारे दी दलील। पर आओ गुरु तो पुछी, गुरु तो किस तरह पुछांगे, बाणी द्वारा। बाणी द्वारा गुरु नानक बोलदा है, बाबा जी वड्डे बाबा जी बचन करदे, सन तू पावना बना, गुरु ग्रंथ साहिब दे उत्ते तू पावना बना गुरु नानक वाली। रोज कहिंदा जागदी जोत, जे जागदी जोत जान के तू पूजा करेगा, ए बाबा जी दी पवित्र पावन रसना तू बचन सुनिया है। बाबा जी कहिंदे सन रुमाल चुकण दी कोई लोड़ नहीं, आपे हुक्म मिलेगा खुश दी। ये तन्ने दा पत्थर बोलदा है साडा हाजर नाजर, जागदी जोत प्रगट गुरां की दे, गुरु ग्रंथ साहिब नहीं बोलदा, बोलदा बाणी सदा बोल रही है, गुरु बोलता है। तीन अखर लिखे होंगे चौरस तेज, स्टाफ तेज गड्डी आ रही है, जिन्हें स्टाफ कर लिया एक्सीडेंट तो बच गए, स्टाफ बोल रहे हैं तीन अखर, दवाइयां पै दें दे। बोलते हैं ना, किस तरह उठ जाके ब्रेक लगा देने, कोई होर तो नहीं बोले, किसी ने होरने तो इशारा नहीं किया, अपने आप ही ब्रेक लग जाती। फिर प्यारी साध संगत, वह तीन अखर हैं जिन्होंने स्टाफ के उत्ते अमल किया एक्सीडेंट तो बच गए, जिन्होंने अनगहली की मोटर मुद्दी फौरन हो जाती, पर तीन अखर वे बोलते हैं। इधर तो प्यारी साध संगत 1430 सफा पे बोलता है, कुछ एक एक अखर पे बोलता है। फिर सुन के जे ना मनिए तो यह साड़ी कमजोरी है, गुरु तो सदा ही बोलता है, ठाकर हमरा सद बोलता, सदा बोलता है, सदा बोलता है भाई, बाबा जी बख्शिश कर देता। तो आओ गुरु तू पुछिए, सिख दा जो तुरा है जीवन दा, तुरा कहंदे एक्सल नूं, जिहड़ा विच हुंदा गड्डी दे, जे उह टुट जाए तां बस तमाशा ही खत्म है, चाहे कितनी चंगी गड्डी हुंदा होवे। तो इसे तरह सिख दा जीवन जिहड़ा तुरा है, वह गुरबाणी,
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਂ

जिनि तुदनु तन के तेन जम नेड़ नया। कितनी बख्शिश होती किनों ते जिन्होंने गुरु नु तन के आओ तन गुरु नानक दियां बख्शां प्राप्त करन वाले सर्वत माई पाई प्यार नाल सारे आखो तन गुरु नानक।

जन नानक को हर बख्श ले हो, जन नानक को हर बख्श। हमारी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह, हम क्यों कर जबे इरानिया हर तुम मत अगम अगाह। हर देहो प्रभु मत गुर सतगुर के पग पा, सत संगत हर मेल प्रभ हम पापी संग तरा। जन नानक को हर बख्श ले हो, हर तुटे मेल मिला, हर कृपा कर।

नाम मिले मन तृप्ति है बिन नामे त्रिग जीवा। कोई गुरमुख सज्जन जे मिले मैं दसे प्रभ गुणदास, और किस विटो चौखनिए मैं नाम करे पर।

जो पड़ताल है जिसनु पड़ताल गुरु मातंद्र किया जाता है उसका भाव है कि ताल नु बदल के गायन करना। जिवें हुण पहला जो रहाओ है वह ध्रुपद ताल च आया है, हुण ताल बदल गया। इसनु असीं दीप चंदी कहने हैं, 1400 मात्र का ताल है, ताल बदल गया है, इसनु पड़ताल कहांगे। और श्री गुरु महाराज जी ने पड़ताल भी बड़े शब्द उच्चारण किए ने, तो आप जरा इसका भी रस थोड़ा जिहा लाओ।

शब्द है वह गवैया नु महाराज का हुक्म है। वह कहते ने तदरदानी दानी तुम दानी तल तुम दिरना। यह ग्रंथ जो है सर्वलोक प्रकाश की बाणी है। धागड़ी धर्म दृढ़ तांग दागड़ी दिम दिरना, बागड़ी वृत्ते बांग तागड़ी तोम तोम तोम दिरना, दागड़ी दे दे ताल कागड़ी कोम किरना। यह साहब जी ने तराना गाया तो इसका मतलब है दागड़ी दे दे ताल कागड़ी कोम किरना। यह अर्थ है कि कुम किरना तुसी पलटे लगाने सरगमा लगा और ताना लगा कुम किरना नाल दे दे ताल दागड़ी दे दे ताल के तुसी ताना लगाते हुए ताल का ना ख्याल भुल जाए। ताना भी लगाओ और ताल दे अंदर लगाओ, ताल ते स्वर का मिलाप करके कीर्तन करना, बाणी नू राग विच ताल विच गायन करना, इस नू कीर्तन कहिंदे। जे राग ते ताल कढ दिओ बाणी पढ़ी जाओ वह कीर्तन नहीं हैगा, पाठ हैगा। तो पाठ जिहड़ा है वह राग तो बिना बाणी पढ़नी पाठ है, राग और ताल दे विच गायन करना जिहड़ा है वह कीर्तन। तो गुरु साहब कहिंदे दागड़ दी दे दे ताल, ताल दे विच तुसी घूम किरना नाल पलटे लगाओ सरगमा करो और ताना लगाओ। उसका स्वरूप सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जो फरमा रहे हैं।

अमृतसर सतगुर सत भक्ति जित नाते कौआ हंस होवे अमृतसर की अमृतसर गुर अमृतसर न बढ़ाया सब दाते इल वेख पंग

श्रवण करो भाई बलबीर सिंह जी ने रागी जति पासुं शब्द बिसर गई सब तात पर आई जब ते साध संगत मोहे पाई।

बिसर गई सब तात जब ते साधु संगत मोह रहाओ ना को बैरी नहीं बेगाना सगले।

0: श्रवण करो।
1: पहला चार ताल है, फिर तीन ताल है, फिर दो ताल है, फिर एक ताल है।

एक ताल दो ताल हूं तीन ताल श्रवण कर लो नहीं जी दो ताल हो गया हूं तीन ताल जो कब कीनो सो भल मान्यो इस मत साधु ते पाई सब मेरा वरे आ

एक ताल, दो ताल, तीन ताल, चार ताल और चार ही राग, माल कौश, चंद्र कौश, सूर्य कौश, जोग कौश, चार ही पंक्तियां, बिसर गई सब तात पराई, जब दिशा संग में पाई, ना को बैरी ना ही बिगाना, सगल संग हमको बने आई, जो कब कीनो सो भल मान्यो, इस मत साधु दे पाई, सब मेरा रहा प्रभ एक है, देख देख नानक दिखाई। आप जी ने श्रवण किया है तराना, साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज फरमा रहे ने, यह तराना जेड़ा है अनकौमां जिहड़ियां ने गैर सिखां नूं चुका के रख देने वाली बात है। मैं इत्थे बहुत वड्डे वड्डे गंधर्व गायक इकट्ठे हुए सी, कहण लगे

सब तो वड्डा मंगता परमात्मा दे खजाने कदे खत्म नहीं हुंदे और इस मनुख दे कदे भरदे नहीं है, कदी नहीं भरदे, खत्म ही रहंदे ने, घाटे वाल नूं जांदे ने। भावें लख यतन करे के कारू मांगू माया दे गंज जोड़ लवे, लेकिन फिर भी कमी रहंदी है। एक सियाणा बंदा कहंदा हो इंसान गंजे कारू जमा कर दी बाज ते, घर शबी सुल्तान आली बाज ते, घर तू मैदानी के आखिर मुर्द ने अस्त, ताकि आमत जिंदगानी बाज ते, ता की होया। तो भाव है कि इस दे खजाने कदी भरदे नहीं और परमात्मा दे कदी खत्म नहीं हुंदे। सतगुरु गुरु गोविंद सिंह जी कहंदे ने परमात्मा दे खजाने जेड़े ना अभंगा बेबूते। तो इस इंसान नूं पुत्र चाहिदे ने, तीहां चाहिदियां ने, ए मान मंगदा है, ए तान मंगदा है, ए शक्ति मंगदा है, कुवत कूत मंगदा है, इस नूं सब पदार्थ दुनिया दे चाहिदे ने। लेकिन सतगुरु कहंदे ने ए कोई बहुत उच्चे पाए दी मंग नहीं है, बहुत वधिया मंग नहीं है। परमात्मा बहुत वड्डा दाता है और वाहल शख्सियत है, वो वड्डा दाता है और उस नूं तिल जिन्नी भी तमा नहीं है। पदार्थ दिंदियां वो कदी थकदा नहीं, वड्डा दाता तिल ना तमाए। लेकिन इस इंसान दी तमा तृष्णा खात्मे नहीं हुंदी, वो ते वाहल शख्सियत है, देंदा दे लैंदे थक पाए, जुगा जुगा अंतर खा ही खाए। इसलिए सतगुरु एक होर जगह वचन करते हैं, दद्दा दाता एक है सब को देवन हार, दें दे तोट ना आवे अगणित भरे भंडार। तो परमात्मा दिया अनेक खूबियां विचों एक बहुत ही वड्डी खूबी यह है कि वो इस मंगते इंसान दे ऐब देखता है, औगण देखता है, लेकिन दस्तूर इस नूं दे ही जांदा है, सदियां तो दिंदा है, जुगा जुगंतरां तो दिंदा है, दोखन देखता है,

मैं तेरे दर्दा भिखारी हां मंगता हां आरता मैंने मंगता जिथे आरता का अर्थ दुखी है उथे इसका अर्थ मंगता भी है। भगत तन्ना जी शब्द आरंभ करते हुए कहते ने गोपाल गोमन पितमी पाल मैंने पालना करने वाला सर्वशक्तिवान।

सतसंग जी गुरु रामदास पातशाह कल्याण मोहल्ला चौथा प्रभ की जय कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे और ये जो है राग आप श्रवण कर रहे हो ये हमीर कल्याण है। गुरु पातशाह गुरु रामदास महाराज और जो ये रीत है बड़ी पुरातन रीत है पांच ताल दी बराबर दी सवारी है और अज छोटे छोटे बच्चे सामने बैठे हैं मैं कह जरा इन्होंने भी हैरान करिए अज सो गुर दे दे के क्योंकि इस तरह ही बच्चे सीखते हैं उत्साह बढ़ता है गुण गाण नाल ही रब नाल प्यार बनता है।

महबूबे की कल तक यह कहा कि निर्माणे निर्माण निकाणे निकाण संत श्री गुरु संस्था की हजूरी देकर बड़ी अच्छी के दिन आपने बेटी गुरु शासन जो आपकी सरकार के काबिल हो जो आपकी जिंदगी के इतने अहम करे मसलों के बीचों आपकी समा कटिया जो आपकी ने सोच लिया कि आप उत्तर बाद जाना है एक गल नाल ही घट आय हो गई सब कुछ टूर पैंड आगे हो गई थे पैसा जी ने आप बड़े सुंदर अंदाज के नाल कुछ संगीत गलत की सत्संजो विद्वान लोग बैठे कंकन जी रंजीत सिंह साहब जी रशिया साहब जी राम जी मेरे अजीत अजिंदर सीतल सिंह जी बैठे हैं सत्संग जी जो संगीत है गाने का एक गलत नहीं मजबूत बिल्कुल गलत नहीं ये कन्ना की गल पै गई नहीं कदम इन्हें राजी हो गए इन्हें राजी नहीं सिर्फ बढ़ने ये गल का मजबूत न बन गल है आदि गल है मेहनत जिन की सुपारत है जिड़ा मर्जी करता है एक कर्म का कर्म है गल का कोई मजबूत नहीं जिन्हें करना है उन साधन की योगी ने मिली पहली गल साढ़े तेरे अखर लग गया है ये तो आड़ है सचिन जी पैसा जी कहा तो खाली बता रहा बिल्कुल नहीं मिलता सी यह सिर्फ तंत्र गल तो पीछे है मैं दो गल कह के सात संगी दुनिया के दो फाइन आर्ट हैं तीजा दुनिया के काम कोई दो कड़े काम गाना पेंटिंग पेंटिंग का वजूद बन गया गाने का कोई स्वरूप नहीं ना शब्द का स्वरूप है ना आदि स्वरूप है ना परमेश्वर एक अन्य जवाब है जब जो सू समझ है कि कीर्तन की है तो फिर तो सत्संग की आवाज की लड़ नहीं झगड़े की लड़ नहीं झगड़े खत्म हो जाएंगे लास्ट पच्ची मिनट टाइम है लास्ट तकरीबन 20-22 मिनट अंग्रेजी समाप्ति करेंगे शब्द की टीक है आपे खुद चेला है आपे आपे हर तरफ चोट बनाने हालात तकलीफ है यत्न करेंगे काबिल नहीं कह सकते तो एक बहुत महान बात है ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰ ਆਓ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਦੋ ਨਜੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਸੂਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ

संगत जी हो, ये आप सुनने वाले लोग हैं, कीर्तन करने वाले हैं। कीर्तन एक ऐसी चीज है, प्रभु की कीर्ति करनी, और राग ताल गुरबानी और प्यार, उसके बाद जिंदगी में सिखलाई होनी, ये सब चीजें बड़ी जरूरी हैं। और सबसे ऊपर है इंसान का जो प्यार है, प्रेम है। तो कबीर साहब कह रहे हैं, मैंने अपने सारे शरीर पे प्रभु का

मार्ग तक दिन तुरना है, गरीब ने भी तुरना है, अमीर ने भी तुरना है, कंगाल ने भी तुरना है, राजे महाराजे ने कौन अपना महाराज तांता इतने बनते ही रह गए, कारा भी ये थे, मकान भी ये थे, जमीना भी ये थे, पुत्र धिया ने भी साथ नहीं देना, फिर कई वस्तु मेरे नाल जाएगी तो हजूर कम

0: ठीक
1: हाँ
0: तो भाई एक दराही थी हर बाजे बच्चे कर दे टिकट नो कितना सवाल के फिर यूके जाना हो हजारा रुपया दी टिकट होती है भी समान एक टिकट जो सिर दे के वाहगुरु जो शब्द गुरमंत्र सानू गुरु तो गुरमंत्र जो नाम है ना तो सानू गुरु और कोई नाम नहीं दे सकता नाम पूरे गुरु तो मिले ते नाम दी जो प्रेरणा है ये नाम जपने वाले महापुरुष का नाम गुरु तो नाम अमोलक रतन है पूरे सदगुरु पूरे गुरु तो किस वेले मिले जिस वेले असि अमृत छे पंजा प्यारे साहब श्री गुरु साहब जी की हजूरी जिस वेले पंज अपनी भुलों को सोच अरदास कर अमृत तैयार करते हैं तो कलगीधर पिता जी का हुक्म है कि साहब श्री गुरु साहब जी की हजूरी भी जिस वेले पंज प्यारे त्याग पर त्याग अपने सोच के अपने आप को सोच के साहबा की हजूरी खड़ोते होते हैं हजूर कहना उन्हें पंजा के अंदर मैं आप आ गया पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे पंचे सो है इतने कोई व्यक्ति नहीं ओ व्यक्ति पंजा ही शामिल कलगी पातशाह जी ने इन्हों बंधना कट दिया कोई व्यक्ति पर जो गुरसिख बाणी का निकले भी प्रेमी गुरु के हुक्म च रहना फिर अमृत पान कराण तो पहला फिर भी अरदास कर पातशाह कलयुगी जी हर वे हर श्वास भुलना आप बख्शिश करो पिछले अवगुण बख्श लै प्रभ आगे गुरु बख्शते फिर अमृत छकने वाले उस वेले गुरमंत्र दी दात गुरु गुरु तो मिलेगा इस नाम की प्रोरता महापुरुष बाबा जी बचन करते सन गुरुआ गुरु गुरु ग्रंथ पर संगत महापुरुष केड़े महापुरुष दी जेड़े सन गुरु ग्रंथ साहब जेड़े तोड़ते उन्होंने संगत महापुरुष बचन करते सन जो गुरु ग्रंथ साहब तो प्या तोड़ता है वह सानू गुरु तू तोड़ी संगत नहीं जेडे जोड़न वाले हैं जिन्हों की संगड़िया दुरमत मजे मित्र सारे सही हाँ उन्होंने दी जग सभाया जन नानक विरले कहते है ही कोई नहीं भाई है विरले ना ही घने पैर पकड़ नानक फोटन वे गुरु ना भी किसी चीज का और नाम दिखे जिस तरह मास्टर किनम नहीं ना बन सकता मास्टर हो किनम हो इसे तरह संत सारे चले हैं पर जो धन गुरु नानक पातशाह जी का संत है गुरु सिख है महापुरुष है वो आप गुरु भी बनेगा संत बड़ा जोड़ देगा उन्होंने

अचल अविनाशी सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी जिस मृत दुर्मत मल नासी सतगुर चरण कमल रित धारण गुर अर्जुन गुण सहज विचारण।

चन नख दरियाओ पैर जगन कटे बेकार पैर धरती जब बेकार पैर चंद्र है सिर पार पैर चराजा तक द्वार पैर सूर्य पैर चंद को करोड़ी चंदना पैर सिद्धु सुनार पैर चाटाने आकाश पैर जोत मामल सूर पैर जावे जावे मोर सजे पौन के सिद्धे नानक ने पौन निरंकार सचे खला पहला नानक ने पौन निरंकार वो कितने रावण वाल कितने कन कहानियां कितने वेद विचार।

సో ఇసే ఎక్స్పీరియన్స్ ను జదం కబీర్ జీ నే ఎక్స్పీరియన్స్ కీతా తో వీ బడా బహుత్ హైరాన్ హోయే. కబీర్ జీ హైరాన్ హోకే శబ్ద లిఖదే హన్ ना ए मानस असी कहने हां आई एम ए ह्यूमन बीइंग मैं मानस हां बट कबीर सेज ना ए मानस ये ते मानस भी नहीं है ह्यूमन बीइंग ते असी एस फॉर्म नु आखदे हां ना पर जिस फाउंडेशन दे उते ए फॉर्म खड़ी है एग्जिस्ट करदी है ओ जो एनर्जी है जां लाइफ करंट है विच इज मेकिंग इट हैपन कहते वो तो मानस नहीं ना है वो मानस नहीं है वो ह्यूमन नहीं है नीदर इट्स मेल नॉर इट्स फीमेल ना ए मानस आफ्टर रियलाइजिंग द ट्रू सेल्फ कबीर सेज ना ए मानस ना ए देव ना ए कोई देवी देवता है ना ए जति कहावे से हो कई बन जाते हैं जति अपने आप से लेबल लगा लेंगे कि मैं जति हाँ कबीर जी कहते हैं जति भी नहीं एक गृहस्थी भी नहीं है जति भी नहीं ना ये जति कहावे से हो ना ये जोगी ना औधूता ना इस माए ना कहूं पूता मेरे ट्रू सेल्फ दी ना कोई मां है ना कोई पुत्र है ना इस माए ना कहूं पूता जो क्वेश्चन में तो पूछा गया है कबीर जी हैज ऑलरेडी रेज्ड दैट क्वेश्चन सवाल पूछा है Where does it exist within the body? Kabir ji, aap is gal lai, is mystery lai, sawal uthande han bani de vich, ya mandir mein kaun basai? Ya mandir mein kaun basai? Is mandir ch kaun rehnda hai? As far as ke kithe rehnda hai, bani kehndi hai, taaya andar jag jeevan data vase. इस सारी दी सारी काया दा कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं जिथे वो नहीं बट उन लोकलाइज नहीं किया जा सकता किसी जगह कि वो इत्थे ही है क्योंकि फिर तो उसनु असी लोकलाइज कर दिता कि वो इत्थे है वो ते इत्थे भी है और उना गैलेक्सीज भी है जिन्हां तक इंसान दी हाले अप्रोच भी नहीं हुई फिर उसनु सी लोकलाइज किवें कर रही है वो लोकलाइज करने वाली चीज नहीं है जो सी कह रही है वो ऐस जगह च रहिंदा है हां उसनु सुरती अनुभव करती है लेकिन है वो बॉडी दे पूरे शरीर दे एक एक जर्रे जर्रे एक एक सेल दे विच समाया होया कबीर साहब आप वंडर करते हैं या मंदिर में कौन बसाए या मंदिर में कौन बसाई तंग का अंत ना कोई पाई कहते ना एक गृही ना उदासी कहते मेरा रियल सेल्फ ना गृहस्थी है ना उदासी है ना ए गृही ना उदासी ना ए राज ना भीख मंगासी ना ए राजा है ते ना ए भीख मंगा बैगर है ना इस पिंड ना रख तू राती कहते इन किमें कह सकते हो कि आई एम ह्यूमन फॉर्म आई एम ह्यूमन बीइंग सम पीपल से दैट If we ask, what are you? You will say, I am a human being. But look at the Gurbani's statement. Oh, can they, na is pind, na is the kushreer hai. Neither it has a body, nor it has blood. Na is the kush pind hai, shreer hai, na is the andar kush blood hai. Na is pind na raktu rati, na e brahman na e khati. Na e brahman na e khatri hai. Is the kush zaat nahi hai. असी अपने आप ते लेबल्स लगाए हन असी अपने आप नु आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं आ हां मैं आ हां मैं आ हां दैट इज ऑल फॉल्स दैट इज ऑल अनट्रू इल्यूजन पर वो कहते हैं एदी कोई भी जात नहीं है क्योंकि वो एक ही है सबना दे विच है और हर जगह दे विच है ते उस दी जात दा उसे नु ही पता है उस दी जात की है और साडी भी सबना दी जात वही है जो उस दी जात है क्योंकि वही साडे विच है ना ए ब्राह्मण ना ए खाती ना ए तपा कहावे शेख
ना ए कोई तपा है, ना ए शेख है, ना ए जीवे ना मरता देख, ना ए जींदा है ते ना ही इसनु किसी ने मरता देखा है, वो आप ही जानता फिर वो की है, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, वो मिस्ट्री ऑफ द मिस्ट्रीज है, उस मिस्ट्री को जान नहीं सकते। कहते ना ए जीवे ना मरता देख, इस मरते को जे कोई रोवे, कहते जो कोई बंदा मर जाता है ना तो वह सोचते हैं कि यह मर गया, कहते उन्होंने नहीं पता कि जो चीज पहला जिंदा सी वह हूं भी उतना ही जिंदा है, सिर्फ जड़ा मकान सी वह टह गया है, पर मकान दे विच रहन वाला होर मकान चले जाएगा, किसी होर मकान चले जाएगा, मकान बदलिया जाएगा, लेकिन मकान जो जिंदा सी कहते रो क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो, तो हूं भी जिंदा है उतना ही, किसी होर मकान चोएगा। ना ए जीवे ना मरता देख, इस मरते को जे कोई रोवे, जो रोवे अपनी पत खोवे, कहते वो अपनी पत खोदा है, तो वो रोई जा रहा है कि वो मर गया पर वो जिंदा है, वो तो उसे तो हासो ही नहीं होनी है, जो रोवे सोई पत खोवे। अखीर कबीर साहब कहते गुर प्रसाद मैं डगरो पाया, फिर गुरु की गल आ जाती है कि गुरु की कृपा दे नाल ए राज ए रस्ता मैनु प्राप्त होया, तो गुरु नु पता है मैं की हां, और गुरु ही ए सीक्रेट रिवील कर सकता है, और गुरु ही इस सीक्रेट नु रिवील करन दे दरम्यान जड़े जड़े ऑब्स्टेकल्स हन, जड़ियां मुश्किलातां हन, उन्हां नु टैकल कर सकता है। कहिंदे हन गुर प्रसाद मैं डगरो पाया, गुरु की कृपा दे नाल कहिंदे ए अपना रियल सैल्फ रियलाइज करन तो बाद की हो गया, जन्म मरण दो मिटवाए, जन्म मरण मेरे दोने खत्म हो गए, क्योंकि रियल सेल्फ ना जमदा है ना मरदा है। जितनी देर तक मैं अपने आप नूं शरीर समझदा हां, शरीर दियां इच्छावां हन, वासनावां हन, तृष्णावां हन, मोह ममता है, उतनी देर तक मैं आंदा हां और जाना हां। जदों रियल सेल्फ असल आपा चीनिया गया, असल आपा पहचानिया गया, कहिंदे जन्म मरण दो मिटवाया, फौरन कहिंदे मेरा जन्म मरण खत्म हो गया। तो अखीर च आखदे हन कहो कबीर ए राम की अंश, उस प्रभु दी ही अंश है, जिस तरह समुद्र दे विच्चों निकालिया होया एक पानी दा ड्रॉप समुद्र दा ही हिस्सा है, इसे तरह ए साडे शरीरां दे विच अकाल पुरख वाहिगुरु दी सुपर कॉन्शियसनेस दा एक ड्रॉप है, लेकिन जिसनू इस शरीर दे विच आन करके एक वहम हो गया कि मैं आ हां, जदों इस वहम नू तोड़ दिता जाएगा उदों ए जो है जिस दा है उही बन जाएगा, उसे दिया तमाम क्वालिटीज जो हैं वो इस दे विच आके मौजूद हो जाएंगियां। आज दे कीर्तन दे विच आप जी की सेवा च यह अर्ज की है, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी का गुरपुरब मनाना सी, ते जिस रह

तौर पे जो अनुभव करना है वो ता ही हो सकता है जे साडे अंदर ये इच्छा पैदा होवे कि गुरु दे सिख सी इस करके हां क्योंकि असी अपने आपे नु लबना है। सो गृही सो दास उदासी जिन गुरमुख आप पछानिया, ओही गृहस्थी गृहस्थी है जिसने अपने आप नु पहचानिया, नहीं ते घरां दीआं घुम्मण घेरियां दे विच वक्त जाया कर रहे। ओही उदासी उदासी है जिसने अपने आप नु पहचानिया, नहीं ते डेरे डूरे ते बथेरे लोग बनाई जांदे हन, उस दे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। सो अपने आप नु पछानना साडी जिंदगी दा मुख फर्ज है, यही साडी जिंदगी दा मिशन है। अगर असी अपने आपे नु पहचाने तो बिना इस जीवन चो चले जावांगे तो फिर असी फिर अगेन घुम्मण घेरियां दे विच पै रहांगे। ए लाइफ ए फॉर्म ए अपॉर्चुनिटी है जिस दे विच असी अपनी रियलिटी नु जान सकते हां, सच नु जान सकते हां। आओ एक दफा इस नु गाओ उपरंत।

जो सवाल पहला भी पूछा गया सी, इज अवर ट्रू सेल्फ और इज अवर ट्रू सेल्फ अवर कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस. कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस आर नॉट टू थिंग्स. सो अवर कॉन्शियसनेस इज अवर ट्रू सेल्फ एंड कॉन्शियसनेस इज अवेयरनेस. सो जो प्रैक्टिस है वो ये है टू बी कॉन्शियस ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑल द टाइम. इफ यू गो ऑन प्रैक्टिसिंग दिस स्टे कॉन्शियस ऑफ द कॉन्शियसनेस बी अवेयर ऑल द टाइम दैट आई एम अवेयर ऑफ माई अवेयरनेस. अगर तुसी ओ करोगे तो तुसी अपने ट्रू सेल्फ दे नाल अपना रिश्ता गंढ रहे होगे. द मोर यू डू द मोर क्लोजर यू गेट. सो जितना ज्यादा अभ्यास करते जावांगे उस दे विच होर भी चीजा हन जो अगले कीर्तना च विचारिया जान दिया, उतना असी अपने ट्रू सेल्फ दे नजदीक पहुंचते जावांगे, उतने ही शांत हुंदे जावांगे, उतने ही ट्रैंकुल हुंदे जावांगे, उतने ही स्टिल एंड साइलेंट हुंदे जावांगे, उतने एकांत और चुप रहने की आदत ज्यादा बन जाएगी. जो जो ये चीज बढ़ेगी एकांत प्यारी लगेगी. महाराज जी गुरु नानक साहब जी की बाणी की एक तुक है, रहे एकांत एको मन वसया आसा महे निराशो. कहते वो सज्जन फिर एकांत विच रहिंदे हैं ज्यादा क्योंकि अपने सेल्फ नाल रहिंदे हैं. एकांत का मतलब यह नहीं कि कल्ले हुंदे हैं, वो हुंदे हैं परमात्मा दे नाल, वो हुंदे हैं अपने अंदर उस जोत दे नाल. जो उस जोत दे नाल जुड़िया पिया उहदा कदों दिल करदा बाहर निकलूं, टाइम वेस्ट करन ते अपने आप नूं डिस्टर्ब करन, उसनूं तां मुश्किल बन जांदी है अगर उसनूं अपनी उस जोत नालों टुट के होर किसे दे नाल कुछ बैठना पै जाए. सो रहे एकांत एको मन वसिया आसा महे निराशो, उसकी यह अवस्था हो जाती है. गुरु चुप की खिमा नंद साहब का पाठ सारे राम.

तू बेअंत को बिरला जाने को बिरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द रंग हाय मुख्तलिफ दारिद बुते अयारे मा तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा नाना रूप तरी बहु रंगी सब तेरे निया तू बेन ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सब मुन इंद्र महाशिव जो करी तू बेन अत ऊंचा ताका दरबारा